बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता, बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे, बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा

गोविंद ना भजे अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का जर

कौड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विदक दी आत्मा कृपा दी जाचना करती है, आपे दी खोज करती है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयों विच गुरबाणी उच्चारण की थी। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे, पाने चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ,

संस्कृत ग्रंथा विच जय श्री जयंत श्री आदि नामां नाल संबोधित श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित जयत श्री ही है। बड़े मनोरंजक अते कठिन राग नूं शुद्धता सहित महान गायक ही गा सकते हैं। जयत श्री का प्रभाव सुख अते खुशी देने वाला है। खुशी लैण लई मन दे आलसिया उगलाना वाला सुभा छड हीरे विच रतन नाम नूं वसा के गुरु बख्शिश लैनी पैंदी है। इस राग नूं मनोरंजक बनाउण लई इस दे सरूप विच ईशव दैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगाए जांदे हन। आरोह विच रिश्वत दैवत वर्जित हन। इस दा वादी सुर गंधार अते संवादी निषाद है। यह राग दिन दे चौथे पहर गाया जांदा है। राग जैतसरी विच दो शब्दां दा कीर्तन सरवण करो। पहला शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। इस नूं गा रहे हन बीबी नवेदिता कौर जी। शब्द दी तुक है कोई जन हर सियो देवै जोर। अते दूजा शब्द गुरु रामदास जी दी रचना हर हर सिमरो आगम अपारा भाई महेंद्र सिंह जी सागर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला शब्द कोई जन हर सियो देवै जोर।

चलिए। सिख ने कड़ी चाली चलनी है जिदे गुरु प्रसन्न हो, चाली चली जिदे गुरु की प्रसन्नता मिलनी ओ चाली चली, दूजी नहीं चली। सिख कदे भी वह चाली नहीं चलता जिदे कलगियां वाला खुश ना हो। गुरु नु खुश करिए प्यारी साहिब संगत, जे दुनिया नु खुश करना चाहते हैं तो गुरु नु खुश करिए। गुरु किस ते खुश होंदा है? जेड़ा गुरु दी चाली चल के गुरु दे हुक्म च रहिंदा। जो भी गुरु का हुक्म, अमृत छकना, सोने दाड़े केस रखना, गुरबाणी नाल जुड़ना, सच धर्म की किरत करनी, सच बोलना, यह है गुरु दी चाली। तो जिहड़ा सिख है वह गुरु की चाली चलेगा। फिर गुरु की चाली केड़ी? हजूर फरमाउंदे

गुरु सिख का जीवन कहा कर जो गुरु का हुक्म है वो कर्म जो भी बाणी नाल जुड़ना सिमरन नाल जुड़ना स्वास स्वास जपना सतनाम जिन्होंने गुरु के हुक्म अनुसार अपने मन नूं सिमरन च जोड़िया प्यारी सात संगत फिर वाहेगुरु करदिया करदिया सिमरन करदिया करदिया

0: तब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

0: Thank you.
1: कबीर साहब कहते ने सब कुछ छड़ दिता है तनना भी बुनना भी हुण इको रब का नाम है लिखिया होया है अपने हिरदे ते किड्डी वड्डी गल है सब कुछ छड़ के मैं हरी का नाम रब

छोटे छोटे लाभां नूं वेखदे रहिंदे आ। भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आती है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं है। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे उह सारी उम्र नस्सा फिरदा है दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर यह पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन होछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लियो मैं लाहा।

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओहदा नाम है, ए ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शिया दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए, ऐसी मंग इस शब्द विच कीती गई।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे हुए।

दुनिया के सब रंग सतनाम श्री वाहगुरु के अंदर आ गए। जिसने नाम जपा उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है, बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी होछे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता किसी किसी को है,

पीर गरोब है, दारू भी समाए, कृपा करे जे अपनी ठाकुर का सो तुम्हारे हाल को कहे सुनो जनो इत

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चों नाल गलबात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चों पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच दोस्तां विच घर दे नौकरां चाकरां नाल ता समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध कीवें जोड़नगे? अपना जन्म कीवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ ऊंटाई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चों नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा सुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो। केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।